है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

और समझदार हर बात को समझ करके लेता है। बेटा हो तो गुरुदेव जैसा, शिष्य हो तो गुरुदेव जैसा। संत हो तो गुरुदेव जैसा, गुरु हो तो गुरुदेव जैसा, आचार्य हो तो गुरुदेव जैसा। और ये कोई गिफ्ट में नहीं मिलता, इसमें कोई लिफ्ट नहीं देता है। चौथी मंजिल पर जाना हो तो आप लिफ्ट से, पांचवी मंजिल पर, दसवीं मंजिल पर आप लिफ्ट से जा सकते हो, लेकिन याद रखना जिंदगी की मंजिल पर पहुंचने के लिए कोई लिफ्ट नहीं मिलती है। जिंदगी के शिखर पर पहुंचने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है, या स्वयं के कदमों से ही चलना होता है। जिन कदमों में दम होता है चलने का, जिन कदमों में दम होता है चलने का, वे ही आचार्य भगवंत बनते हैं। और इसलिए ये कहानी है नहीं, ये सच्ची जुबानी है। एक वो व्यक्ति जिसको ये भी समझ में नहीं आता था, और आखिरी दिन तक समझ में नहीं आया, बचपन में भी समझ में नहीं आया, और 92 ईयर के होने के बाद भी उनके समझ में नहीं आया, जो तुम्हारे और मेरे समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। एंड लेट मी रिपीट, एक बात उनके बचपन में भी समझ में नहीं आई, उनको जवानी में भी समझ में नहीं आई, और 92 ईयर के होने के बाद भी समझ में नहीं आई, वो बात तुम्हारे और मेरे समझ में बहुत जल्दी आ जाती है। उनको कभी नहीं लगा कोई भगवान जुदा जुदा होते हैं, उनको कभी नहीं लगा कि धर्म जुदा जुदा होते।

0: उन्हें लगा डेवन से बचपन से सब सही है, सब सही है, इसलिए वो कुरान भी पढ़ लेते थे, वो बाइबल भी पढ़ लेते थे, वो गीता भी पढ़ लेते थे, वेद भी पढ़ लेते थे, गुलिस्ता भी पढ़ लेते थे, और केवल पढ़ते नहीं थे ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो कुरान से भी कई बातें उन्होंने सीखी, बाइबल से भी उन्होंने कई बातें सीखी, गीता से भी सीखी, आगम से भी सीखी। उन्हें नहीं लगा ऐसा कभी कि कुरान से कुछ सिखा नहीं जा सकता है। 90 साल के 85 साल की उम्र में भी उनको लगा कि मैं 25 साल के लड़के से सीख सकता, 85 साल की उम्र में भी उनको लगा कि मैं किसी मौलवी से सीख सकता हूं, और मौलवी से सीखने के लिए तनख्वाह भले ही समाज दे दे लेकिन रिस्पेक्ट मैंने ही देना है, और मौलवी को भी रिस्पेक्ट मैंने ही देना है, चाहे कोपरगा हो, चाहे सिकंदराबाद हो, चाहे जालना हो, इन तीनों ही जगह पर उन्होंने वहां वहां के फारसी के अरबी के जानकार लोगों से सीखने का क्रम चलाया, जालना में भी, सिकंदराबाद में भी और कोपरगांव में भी। 79 साल की उम्र में भी, 78 साल की उम्र में भी और 83-84 साल की उम्र में भी वंदनीय थे वो, श्रद्धेय थे वो, उनके चरणों में मत्था झुकाने के लिए लोग तरसते थे, लेकिन जब मौलवी उनको सिखाने के लिए आता तो वे पट्टे से उतर करके जमीन पर अपना आसन लगाते। मुझे 78 का याद नहीं है, 79 का भी मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे कोपरगांव का याद पक्का है कि बिल्कुल 25-26 साल का ही वो मौलवी था जो सिखाने के लिए आया था, और जैसे वो आया तो गुरुदेव ने कनक ऋषि जी महाराज साहब को संकेत किया कि नीचे आसन बिछाओ। उस मौलवी ने कहा कि आप तो फकीर हो, आप तो फकीर हो, मैं आपका आदब करता हूं, आप नीचे क्यों बिराज रहे, आप पट्टे पर ही बिराजिए, मैं खड़े खड़े सिखाऊंगा, मैं जवान हूं, मैं खड़े रह सकता हूं। गुरुदेव ने बहुत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप खड़े खड़े सिखा सकते हो लेकिन मैं पट्टे पर बैठ करके सीख नहीं सकता, मुझे आपसे सीखना है तो विनय से ही सीखना है। कौन कह रहा है ये समझ उनके मन में आचार्य बनने के बाद भी थी, ये सहजता, ये सरलता, ये नम्रता, ये विनयशीलता। लोग उनको जिस समय भगवान कहते थे और भगवान के रूप में आज भी लेते हैं, उस समय भी उनमें शिष्य जिंदा था। भगवान होने के बाद, गुरु होने के बाद शिष्य जिंदा रहना, बाप बनने के बाद बेटा जिंदा रहना, सास बनने के बाद बहु जिंदा रहना। जो जो यहां सासों बैठी है उनके पूछ रहा हूं, उनके अंदर का बहु, उनके अंदर के बहु जिंदा है क्या? जो बाप बन करके यहां बैठे उनसे पूछता हूं, तुम्हारे अंदर का बेटा जिंदा है क्या? कल्पना करो कि आचार्य भगवान बनने के बाद लाखों लोगों के चरणों में मस्तक झुकाने के बाद शिष्य बने रहना। आज तो हम उस जमाने में जीते हैं कि सीखने की उम्र में भी लोग शिष्य नहीं रह पाते। आज तो हम उस युग में जीते हैं कि जिससे सीखा उससे वंदना, उसको वंदना करने का भी मन नहीं होता है। जिससे सीखा उसको वंदना करने में भी शर्म आती है। और जब उनके तरफ देखता हूं तो लगता है कि जो बात उनके बचपन में भी समझ में आई थी, दीक्षा लेने के बाद भी समझ में आई थी, और लाखों के भगत, लाखों भक्तों के भगवान बनने के बाद भी समझ पक्की थी, मुझे सीखना है तो मैं आचार्य बनकर नहीं सीख सकता हूं, मुझे सीखना है तो मैं भगवान बनकर के नहीं सीख सकता हूं, मुझे सीखना है तो शिष्य बनकर ही सीख सकता। उन्होंने केवल आगम पढ़े नहीं, आगम कंठस्थ नहीं करे, केवल उन्होंने आगम को जीवन में जिया। और शिष्य की डेफिनेशन गई है, याद रखना, नौ तत्व के साथ आनंद गाथा चलनी है। किसके साथ चलनी है? और शिष्य उसको कहते हैं जिसको शुभ का आश्रय करने में मास्टरी आती है। किसकी? आपकी भाषा में बोलो, जिसको पॉजिटिव एनर्जी लेने की स्किल आती है। कौन सी एनर्जी बोलो? जिसको पॉजिटिव एनर्जी हर जगह से लेने की स्किल होती है वो शिष्य होता है। चाहे सामने गंदगी हो, उसमें से भी जो खुशबू को खोज सकता है उसको भगवान महावीर ने शिष्य कहा है। सामने से गुस्सा आ रहा है, सामने से बोलो गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से में भी जो गुरु कृपा का साक्षात्कार करता है उसको परमात्मा ने शिष्य कहा है। आक्रोशाय वहाय में, खड्डू या चेवड़ा में, कल्लानु मनु सासंतो, पुत्तों में भाय नायति साहू कल्लान मन नहीं। गुरु गुस्सा कर रहे, गुरु थप्पड़ लगा रहे, गुरु टॉर्चर कर रहे, और उसमें जिसको लगता है कि गुरु मुझे बाप जैसा संभाल रहे, उसको परमात्मा ने शिष्य कहा। और ये आगम पढ़ने के पहले से उनके अंदर में था, आगम पढ़ने के बाद तो ये पक्का हो गया था, आगम पढ़ने के पहले से ही उनके अंदर में था। और तभी वे उस महापुरुष के पास रह सके कि जिस महापुरुष के पास कोई शिष्य टिका नहीं था। रतन ऋषि जी महाराज साहब दादा गुरु मेरे, उनके पास बहुत लोगों ने दीक्षा ली, लेकिन उनके साथ जीना, उनके कृपा का पान करना, यदि किसी को आया तो केवल एक ही मधुकर था, आचार्य भगवान। बाकी तो कईयों ने दीक्षा लेने के पहले चले गए, कई दीक्षा लेने के बाद अलग हो गए कि नहीं। लेकिन गुरुदेव शिष्य बनकर ही उनके साथ रहे। और किसी की कृपा लेनी हो तो शिष्य बनने की स्किल होगी तो ही कृपा मिलेगी, और शिष्य बनने की स्किल नहीं है तब पहाड़ी पर बारिश बहुत होती है, पहाड़ी पर बारिश बहुत होती है, लेकिन पानी पहाड़ी पर टिकता नहीं है। पानी टिकता वहीं पर है जहां ग्रहण करने का सामर्थ्य है। पत्थर को पानी मिल सकता है लेकिन पत्थर पानी पी नहीं सकता है। जो मिट्टी पानी पी सकती है उसी मिट्टी में बीज पनपते हैं। और आश्रव का मीनिंग है मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी हूं, मेरे में पानी चूसने का सामर्थ्य है, वो स्किल मेरे पास है। जिस दिन ये स्किल समाप्त हो जाती है उस दिन बिना मरे हम मुर्दा हो जाते हैं। और वो 92 की एज में भी शिष्य बन करके रहे। इज इट ए पॉसिबल फॉर मी फॉर यू? और मैं आराम से कह सकता हूं यदि सासू बहू बन करके रह जाए बहू के साथ, सासू सास बहू बन करके बहू के साथ रह जाए तो बहू कभी भी उसे छिप करके पियर में फोन नहीं करेगी। क्या लगता आपको? ये स्वर्ण मैं मां बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, मां बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। हमेशा लोग कहते कि सास में मां जैसा रहना चाहिए, मैं नहीं बोलता हूं। और सास ने कभी मां बनना ही नहीं चाहिए। जिस दिन सास मां बन जाती है ना तो मां का काम एक ही रहता है, बेटी को रवाना कर। कोई मां बेटी को अपने पास रखना पसंद है नहीं करती, और कोई बेटी भी मां के साथ रहना पसंद है नहीं करती। यस और नो? इसलिए मैं सास को मां बनने के लिए कभी नहीं कहता हूं, लेकिन सास बनने के बाद भी उसने अपने अंदर की बहू रानी को जिंदा रखना चाहिए। और पता नहीं क्या हो गया है, वो जिस दिन बेटे की शादी हो जाती है उस दिन उसके अंदर की बहू की रवानगी हो जाती है। इधर बहू का जन्म होता है, अगला वाक्य नहीं बोलता हूं, वो केवल समझने का वाक्य। और बाप बाप बनने के बाद भी बेटा बनकर के रह जाए, बेटे से सीखने की तैयारी रखे। बेटे का मीनिंग क्या है? बेटा किसको कहते हैं? बच्चा किसको कहते हैं? जो सिखाता है कि जो सीखता है उसको बच्चा कहते हैं। हेलो, जो सीखता है उसको बच्चा कहते हैं, उसको बेटा कहते हैं। यदि बाप बनने के बाद भी वो अपना बेटा जिंदा रखे तो मुझे नहीं लगता है कोई बेटा बाप का इंसल्ट करेगा। गुरुदेव का कोई इंसल्ट नहीं कर पाया, समझ लीजिए बात को। बच्चे का कोई इंसल्ट कर ही नहीं सकता है, बच्चे का कोई इंसल्ट कर ही नहीं सकता है। कर सकते हैं आप इंसल्ट? किसका करते हैं आप? हेलो, इंसल्ट किसका करते हैं? बड़ों का कि छोटे का? बड़ों का। यानी बड़े बनना इसका मतलब इंसल्ट के लिए तैयार रहना। बच्चे का कोई इंसल्ट कर ही नहीं सकता है। बच्चा किसी का भी हो तो रामेश्वर तू मोबाइल छोड़ आवाज पा, बच्चे का कोई इंसल्ट। और यदि आपको इंसल्ट से बचना हो तो इस आनंद गाथा का पहला सूत्र सीख करके जाओ कि मैं उम्र से बड़ा हो जाऊंगा लेकिन दिल से बच्चा ही रहूंगा। यदि आनंद गाथा की कोई सीख आज लेकर के जानी है, लेट मी रिपीट, 28 मार्च 1992 तक वो शिष्य बन करके रहे, उस दिन भी वो सीखते रहे, 365 दिन में से एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन वो नया कुछ नहीं सीखते थे। उस उम्र में भी उनकी जीने सीखने की इच्छा प्रबलतम थी। और यहां तो मैंने पूछा कि प्रतिक्रमण सीखने का समय कौन सा रखना। हेलो, सब चिंतन में लग गए, कौन सा समय मारा साहब की लान पीछा अपना ने, वो दुकान रो टाइम किसके एडजस्ट कराना। मुझे आश्चर्य लगता है, मुझे आश्चर्य लगता है, आचार्य पद का दायित्व निभाते हुए भी वो मौलवी के पास सीखने के लिए समय निकालते थे। उनसे ज्यादा बेजी मैं और आप तो हो ही नहीं सकते। आचार्य पद पर रहते हुए नियमित रूप से 1 घंटा सीखने के लिए निकालना मौलवी के पास, ये स्किल जिस दिन तुम्हारे में और मेरे में भी जिंदा हो जाएगी, उस दिन समझना कि सच में हमें गुरुदेव का करंट लगा है। उनके सानिध्य में रहकर के उनकी खुशबू न आई तो सानिध्य में रहने का कोई मीनिंग ही, बहुत अच्छा शब्द है सहवास, क्या बोलते हैं सहवास, एक दोन वाक्य मराठीत बोलतो, ज्याच्या मधून सुवास जन्मतो त्याला सहवास म्हणतात, ज्याच्या मधून सुवासाचा जन्म होतो त्याला सहवास म्हणतात, आणि ज्याच्या मधून अविश्वासाचा जन्म होतो त्याला दुश्वास म्हणतात। इस आनंद गाथा का इतना ही लक्ष्य है कि तुम्हारे और मेरे जीवन में, मेरी सोच में, मेरी भावना में, मेरे फीलिंग में उनके स्पंदन का संगीत शुरू हो जाए, उनके वाइब्रेशन में रिसीव कर सको, आप रिसीव कर सके, और जो रिसीव कर सकता है वही शिष्य होता है, वही भक्त होता है। जो रिसीव नहीं करता है, जो रिस्पॉन्स नहीं देता है, जो रिप्लाई नहीं देता है, जो केवल रिजेक्ट करता है, उसको दुर्योधन कहते हैं, उसको रावण कहते हैं, उसको गौशालक कहते हैं, उसको बिल्कुल एक शब्द में बोलना हो तो अहंकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहंकारी। और हमने अपने अहंकार को बहुत सुंदर सुंदर नाम दिए, मेरा स्वाभिमान है। क्या है? हाँ, मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं क्या हूं? स्वाभिमानी हूं। अहंकारी में और स्वाभिमानी में इतना सा ही अंतर होता है, अहंकारी दूसरे का इंसल्ट करता है और स्वाभिमानी कभी दूसरे का इंसल्ट करता नहीं है। कि उसको पता है कि जैसे मुझे आदर प्रिय है वैसे सामने वाले को भी आदर प्रिय है, उसको स्वाभिमानी कहते हैं। जो स्वयं का भी सम्मान करता है और दूसरे का भी सम्मान करता है उसको स्वाभिमानी कहते हैं, और जो केवल स्वयं का ही सम्मान करता है उसको अभिमानी कहते हैं। एक बार चेक कर लेना चाहिए, मैं स्वाभिमानी हूं कि अभिमानी हूं। गुरुदेव मौलवी का भी सम्मान करते थे। हेलो, किसका और कितने साल की उम्र का? 25 साल की उम्र का गुरुदेव उससे 60 साल बढ़ेगी, उसका भी सम्मान करते थे। क्या मैं आपको पचकान दे सकता हूं? हेलो, क्या मैं आपको पचकान दे सकता हूं? रिप्लाई तो दीजिए, हाँ या ना। ना कहेंगे तो नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आप नहीं लेंगे तो नहीं दूंगा, पक्की बात है। आप लेंगे तो ही दूंगा, बोलो। नहीं, सबका आवाज आए तो परसो, नहीं तो एक दो को बैठे पंगत में एक को परोसना दूसरे को नहीं परोसना, ऐसा पंगत भेद करना मुझे गुरुदेव ने सिखाया नहीं। हेलो, चेयर पर बैठे हुए लोग बोलेंगे, नहीं आप बोलेंगे तो आवाज आ जाएगी मेरे पास। दू पचकान, बस मैं जिनके साथ घर में रहता हूं उनका मैं कभी अपमान नहीं करूंगा। हेलो, भारी जाता हूं शीला तो थोड़ा गली भी दे सकता हूं साथ में। जब भी घर में रहने वाले किसी का अपमान करने का मन हो तो उसको बगीचे में ले जाकर अपमान करना, घर में अपमान नहीं करना। इंसल्ट करना ही है तो कहां करना? हाँ, बाहर ले जाकर करना। घर में घर वाले का इंसल्ट नहीं करना। हेलो, कहीं से बोल नहीं दिया थे हा? और इतने से भी पचकान गुरुदेव के आप लेकर गए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, न आपका बेटा आपसे जुदा होगा, न आपकी बहू आपसे जुदा होगी, न आपकी पत्नी कभी डिवोर्स मांगेगी। ये जितने डिवोर्स के कैसे चालू, यदि आप उसको चेक करोगे तो उसमें सबसे पहला कारण मिलेगा कि मेरा वहां पर कदर होती ही, मुझे स्पेस मिलता नहीं। ले सकते हो क्या पचकान? दू कहीं लेहुला के पक्का बोलो, ओम आनंद गुरुवे नमः, ओम आनंद गुरुवे नमः, ओम आनंद गुरुवे नमः। हो आराध्य गुरुदेव, आपके जन्मोत्सव पर आपकी गाथा सुनने का, पीने का, समझने का सौभाग्य मिला है, और उसी सौभाग्य में मैं दुर्भाग्य को रवाना करने के लिए एक नेम लेना चाहता हूं। मेरे घर में घरवाले का मैं कभी भी अपमान नहीं करूंगा, करना हो तो बाहर ले जाकर करूंगा। तजभंते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपानम ओश्रामि। हाँ, तो आनंद गाथा आपके घर में पहुंच गई। आनंद गाथा आपके कान में पहुंचनी चाहिए कि आपके फैमिली में पहुंचनी चाहिए? आपके फैमिली में पहुंचनी चाहिए कि आपके संग समाज में पहुंचनी चाहिए? आपके संग समाज में पहुंचनी चाहिए कि अहिल्या नगर में पहुंचनी चाहिए? तो कौन पहुंचाएगा? तो रोज रविवार होगा कि आज के दिन रविवार होगा? हेलो, कम से कम 13 तारीख तक रोज रविवार, कम से कम 13 तारीख तक रोज रविवार। यस और नो, थोड़ा जोर से बोलो ना, और जोर से। वाह वाह, मजा आ गया है ना, मजा आ गया। कैमरामैन सबकी शूटिंग कर लेना, चेहरे देख लेते, वो चेक करने के लिए ठीक रहेगा ना, है ना, मस्त पैके बिल्कुल। तो कैमरा या दूसरा कैमरा ले,
1: पब्लिक में जा रहे
0: हैं। हाँ, पब्लिक में है क्या कैमरामैन? हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ, सगड़े चांगले फोटो गए, मुझे चेक करता है ये चेहरे आले के नहीं आले। सीसीटीवी कैमरा अठा लागे लागे रहे ना, तो थोड़ी सी रील्स निकाल ले, देख लीजिए, काले स्कैन कर लीजिए कि आज आया रहा चेहरा काले आया कि नहीं आया। नहीं आईला रे भैया, मेकेट क्यों नहीं आईला? हाँ नहीं, आप जो मन में सोच रहे वो मैं बोल नहीं सकता हूं। अपने अध्यक्ष को कैसे संभालना है ना आज? अच्छा आज मैत्री देने, अच्छा अच्छा आज आज आपकी मानू कि भगवान महावीर की मानू? आपकी बात मानो कि भगवान महावीर की बात मानो? भगवान महावीर की। भगवान महावीर ने कहा मिट्टी में सो भये सो। भगवान ने मैत्री करने के लिए पार्शियलिटी का सूत्र दिया ही नहीं कि जिससे मेरी पटती उससे मेरे मैत्री, जिससे मेरी नहीं पटती उससे मेरे मैत्री नहीं। परमात्मा ने कहा ही नहीं सौव भूयेसु, सबके साथ मेरी मैत्री है। वो मेरा मित्र हो या न हो मैं उसका दोस्त हूं। मैंने सुबह ही कर्म, मैं आपके आज संडे के दिन 10 मिनट ले सकता हूं क्या? हाँ वही कह रहा हूं, 20 मिनट लेना हो तो मुझे साउंड सिस्टम लगेगी है ना, अजू पुरसा आवाज आता ही है ना। जिस उठाने सब्जी में नमक लगे ना उस मैंने बखान में साउंड सिस्टम लगे, बिना नमक की सब्जी थे खा ही नहीं सको मैं, व्यवस्थित साउंड सिस्टम के बिना मस्ती में बोल नहीं सको और बाहर डिक्लेयर है। मैं जहां भी चौमासे करने के लिए गया तो मैंने केवल एक ही कंडीशन रखी है, मुझे माइक बराबर देना। दिल्ली में था, दिल्ली में चांदनी चौक में गया था, प्रवर्तक सिंह जी त्रिनगर भी राजे थे, 2 महीने के लिए मैं चांदनी चौक गया था। 1997 की बात है और चांदनी चौक में गया, उन्होंने माइक का भोंगड़ा सामने ला करके रख दिया और बोलू पहले दिन बोल लिया। बाद में अध्यक्ष को कहा कि भैया ये माइक होगा तो मैं कल प्रवचन नहीं दूंगा। वो मेरे तरफ देखिए कैसे महाराज है कि प्रवचन देने के लिए माइक की कंडीशन लगाए। उसने सुना हम सुना कर दिया, दूसरे दिन वैसा ही तरीका चलता रहा। फिर सेकंड डे मैंने महामंत्री को बोला कि बोले भैया ये माइक नहीं जमेगा। वो मेरी तरफ देख करके निकल गया। तीसरे दिन फिर मैंने व्याख्यान में अनाउंस कर दिया कल यही माइक रहेगा तो लोकेश ऋषि जी प्रवचन देंगे, मैं प्रवचन नहीं दूंगा। उसके बाद एक समझदार श्रावक मेरे पास आया, उसने कहा कि महाराज साहब मैं जिंदगी में पहला संत देख रहा हूं कि जो प्रवचन देने के लिए माइक की कंडीशन लगाए। बोले महाराज साहब हमको सुनना है, आप माइक को टेंशन लेते हो, हमको सुनाई दे रहा है ना। मैंने उसको जवाब दिया भैया मुझे उन लोगों को यहां बैठाना है जो अपने बेडरूम में हाई लेवल के साउंड सिस्टम पर संगीत सुनते हैं, उनके कान उस आवाज के लिए आदि हो चुके हैं, इस आवाज में वो यहां बैठने वाले हैं। और उसको मेरी बात समझ में आई, उसका नाम था देवेंद्र जी भंसाली और वो उसी समय गया और पूरी साउंड सिस्टम परचेस करके आया और सेकंड डे ऐसी माइक लग गया। तो फिर तो प्रदूषण के बाद गया, तो मैं कब गया था? प्रदूषण के बाद गया था, लेकिन माइक बढ़िया आ गया। तो उस समय आचार्य देवेंद्र महाशय चौमासा उदयपुर चल रहा था और मेरा चांदनी चौक था, उनका भी पहले चांदनी चौक चौमासा हो चुका था। अनुभाग की वो फिर उत्तराध्यन सूत्र की आराधना की, बाकी उपस्थिति की खबर सुन करके चंदनी चौक वाले जब दर्शन के लिए गए तो दिनेश मुनि जी ने उनको पूछा, हमारे समय तो तुम पजूषण के समय भी इतने नहीं आए थे, अभी दिवाली के समय में तुमको टाइम कैसे मिल गए? और मुझे पक्का पता है ये जितने भी जवान लोग हैं ना, इनके कानों में रुचे पचे सुहाए ऐसी आवाज पहुंची ना, ये बराबर आएंगे। इनको एडिक्शन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? और इनका एडिक्शन घर के उस साउंड सिस्टम पर हो चुका है। मैं बार बार जो रामेश्वर को बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि मुझे रामेश्वर का टेंशन नहीं, मुझे उसका टेंशन है कि उसको यदि कान में आवाज बराबर नहीं पहुंचे, केवल नहीं नहीं सुनाई देवे ना, नथिंग। पेट भरने के लिए जो खाते हैं वो जानवर होते हैं। हेलो हेलो, पेट भरने के लिए जो खाते हैं वो जानवर होते हैं, स्वाद लेने के लिए जो खाते हैं वो इंसान होते हैं, और मंजिल पर पहुंचने के लिए जो खाते हैं वो संत और साधक होते हैं। मुझे मंजिल पर पहुंचना है तो मैं समझौता नहीं कर सकता हूं। और ऐसे भी सबको पता है प्रवीण ऋषि और समझौता नहीं होता है। आओ, मैंने माला में मारा सामने थे बोलो डरो, मारा ला रहे थे वैसे बोलता रहे वो भक्त कि प्रवीण ऋषि ने तड़जोड़ मालूम को नहीं है ना। हा? पीछे बोलने की अपनी आदत है ना। बाबू सेठ मुझे आज बोलने के लिए बहुत मैटर दे रहा है, पहले एक मैटर दिया दूसरा मैटर दे दिया है ना। मेरे प्रभु महावीर ने कहा, मेरे प्रभु महावीर ने कहा, मांस खाने वाला भी पीठ का मांस नहीं खाता है। क्या? मांस खाने वाला भी पीठ का मांस नहीं खाता है, और जो पीठ के पीछे बोलता है परमात्मा ने उसको कहा वो पीठ का मांस खाता है। नो पिट्ठे मांसम खाए इच्छा, ये तीर्थंकर महावीर का संदेश है। आप उसको निंदा कहते हैं, आप उसको चुगली कहते हैं, लेकिन मेरे महावीर उसको कहते हैं वो पीठ का मांस है। और मुझे कहने दीजिए, जिनका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, जिनका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं 18 साल 24 आवर्स उनके साथ रहा हूं, लेकिन उनके मुंह से मैंने कभी किसी की निंदा न सामने सुनी है न पीछे सुनी है, किसी की नहीं सुनी, कभी नहीं, कभी नहीं। उन्होंने ना अपनी जुबान गंदी करी ना दूसरे के कान गंदे करे। निंदा करने वाला अपनी जुबान भी गंदी करता है और दूसरे के कान भी गंदे करता है। आगे बोलू क्या थोड़ा सा? आगे बोलू थोड़ा सा, बोल दो। सफाई कर्मचारी का स्पर्श तुम्हें सुहाता नहीं है, सफाई कर्मचारी का स्पर्श तुम्हें सुहाता नहीं है। सफाई कर्मचारी तुम्हारे पड़ोस में आकर बैठे तो तुम्हें एलर्जी जैसा फील होता है, वो तो गंदगी को साफ करता है तब भी आपको सुहाता नहीं, तो गंदगी फैलाने वाले कैसे सुहाते हैं? हेलो, आपने बोलने के लिए कहा इसलिए बोला, आप कहते आगे मत बोलो तो मैं नहीं बोलता। यदि सफाई कर्मचारी नहीं सुहाता है तो गंदगी फैलाने वाले आपको कैसे सुहाते हैं? गंदगी फैलाने वाले सब आप दोस्ती कैसे करते हो और गंदगी फैलाने वाले सब आप कैसे बैठते हो? सुनने वाला सुनने से इनकार कर दे तो बोलने वाले कब तक बोलेंगे? सुनने वाला रस लेकर के सुनता है, इसलिए बोलने वाला भी स्पाइसी बना करके परोसता है। ओके, जन्मोत्सव चल रहा है, मैंने बहुत सारा बोल दिया है। अनंत गाथा का पहला सूत्र याद रखना, गुरुदेव के जीवन का आश्रव क्या है? आश्रव। उन्होंने किसका आश्रव किया? केवल पॉजिटिव का किया, केवल शुभ का किया, केवल देव गुरु धर्म उनका आश्रव किया। अरे जो कुरान से अच्छी बातें ले सकता है, जो बाइबल से अच्छी बातें ले सकता है, वो अच्छा ही देगा। अच्छा लेने का सामर्थ्य उनके पास था, इसलिए वो वंदनीय बने, श्रद्धेय बने। और आओ उनके जन्मोत्सव पर, इसी भूमि से जन्मोत्सव का एक नया आयाम जिन शासन में शुरू हुआ था, वो चौमासा भी, वो चौमासा भी 18 साल के बाद हुआ था। 2009 का चौमासा भी 18 साल के बाद हुआ था। 91 का चौमासा गुरुदेव के चरण में हुआ था, 92 का चौमासा खार हुआ था, और 2009 में चौमासा हुआ था। यहां पर वो चौमासा भी 18 साल के बाद हुआ था, ये चौमासा 17 साल के बाद है। और उस पहले चौमासे में, आपका चौमासा डिक्लेयर होने के पहले, 2009 का अहमदनगर का चौमासा डिक्लेयर होने के पहले, महावीर प्रतिष्ठान में गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। और उस जन्मोत्सव में मैंने 108 अठाई की नियोजन किया था कि गुरुदेव के जन्मोत्सव पर 108 अठाइयां करनी है, और 127 अठाइयां हुई थी। कितनी? 127 अठाइयां हुई थी। और उसी दिन पट्टे पर बैठ करके उस पागल प्रवीण ऋषि ने एक बात कही थी कि तूने गुरु भक्तों की श्रद्धा का अपमान किया है। मेरे सेंटेंस मुझे आज भी याद है, तूने गुरु भक्तों की श्रद्धा का अपमान किया है। वो 127 दे सकते थे और तूने केवल 108 मांगी। मैं गुरु भक्तों का इंसल्ट नहीं करूंगा, और अगले जन्मोत्सव पर गुरुदेव के चरणों में 1008 अठाई की भेंट चढ़ाऊंगा। चौमासा तुम्हारा बाद में खुला है, घोषणा पहले हुई थी। और जब घोषणा हुई थी तो सभी साधु साधियों ने मेरे पर एक कमेंट्स पास करी थी कि प्रवीण ऋषि का माथा में हवा घुस गई। समझो ना, थे हवा घुस गई मतलब, बोले 1008 अठाइयां संवत्सरी नहीं हुए, लेकिन ये गुरु कृपा और गुरु भक्तों की श्रद्धा का समर्पण। कोई नहीं सोचता था, लेकिन मुझे पक्का विश्वास था गुरु भक्तों पर और गुरुदेव की कृपा पर। और यही भूमि साक्षी है उस बात की कि मोर देन 1008 अठाइयां 2009 में यहां शुरू हुई है। और उस समय से चला हुआ यह क्रम 17 साल के बाद फिर आपके आंगन में, फिर गुरुदेव के आंगन में है। लेकिन आंकड़ा, सब बैंक वाले यहां बैठे हैं, 5 साल में दुप्पट हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो 8 साल के तू भी चले ला, मैंने कहीं दिक्कत को नहीं, 3 गुना हो जाता है ना। अब 17 साल में तो बराबर होता है, तो 3 गुना फिर बराबर बोल रहा हूं ना, 1008 3 गुना। कितनी? 3600 प्लस कितनी? 36 उपास क्यों करनी है? मैं कल से तपस्या पर थोड़ी बात करूंगा, क्यों उपास करना है? ऑटोफेजी साइंस का नियम है, इस बॉडी में से टॉक्सिन निकालना है और आत्मा में से पाप निकालना है। उन्होंने बॉडी की बात करी है, लेकिन महावीर केवल बॉडी की बात नहीं करते हैं, महावीर सोल की भी बात करते हैं। तपस्या धुनहि पुराण पावगम, तपस्या के माध्यम से पुराने पाप समाप्त होते हैं और टॉक्सिन निकलता है। डॉक्टर कहते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी ट्रीटमेंट कोई है तो तपस्या है, साइंस प्रूफ। चिंताएं मत करो थे, थायराइड करने गोलियां खाने वालों ने अठाई करी है, रेखा श्री सीमा सबसे पहले जिसने थायराइड में अठाई करी 2008 में पुणे में थायराइड की गोलियां चलती थी और अठाई करी। चार दिन तक घर में किसी को कहा नहीं, पांचवें दिन जब कहा तो मैं शब्द सुना रहा हूं उसके। पांचवें दिन जब उसके परिवार वाले के साथ वो आई तो उसका भाई बोला, मार साहब ये और अठाई विश्वास नहीं होता, बोले इसको भूख लगने के बाद रात को 2 बजे किचन में जाकर रसोई बनाकर खाने वाली बोली, ये अठाई। लेकिन अठाई करी उसने, गुरुदेव के भक्ति में करी और 2008 में जो थायराइड की गोलियां बंद हुई आज तक बंद है। तुम्हारा नेवासा फाटे का मराव सतीश गांधी और 2009 में उसके पूरे परिवार ने अठाई करी थी और उससे उसकी मिसेस की हालत आर्थराइड से ये होती थी। जब उनके घर पर मैं चौमासे के पहले गया था तब तक वो बिछाने से उठ नहीं सकती थी जब तक 1 घंटा उसकी मालिश नहीं होती थी। और उसने अठाई करी और अभी चलती फिरती घूमती है। पिछली बार हमने पुणे में मेडिकल चेकअप कराया, अठाई के पहले के ब्लड लिए और पारने के पहले का ब्लड टेस्ट किया। जो डॉक्टर बैठे होंगे वो मेरी बात को सपोर्ट करेंगे। जिसका हीमोग्लोबिन जिंदगी में कभी 9 के आगे नहीं गया था, जिसका हीमोग्लोबिन जिंदगी में कभी 9 के आगे नहीं गया था उसका मांस खमन में हीमोग्लोबिन 12 हो गया। कहीं ना रहो था मुंदाड़ा मुंदाड़ा डूंगर वाली बेटी थारा बीटरूत नाम याद रख लो, मुंदा डूंगर वाली मुंदा मुंदड़ा। तपस्या से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जिनको जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम होगा अठाई कर लो। मेडिकल रिपोर्ट पिछले साल की कह रहा हूं मैं आपको। तो तपस्या में बोले ब्लड प्रेशर की भोजन मासा बीपी की गोली ले सकू गई। तपस्या के गोली के साथ दूसरी गोली कोई चलती नहीं है और हाई बीपी की दवा कोई है तो नहीं खाना ये दवा है। हाई बीपी होता क्यों है? नमक खाएंगे, घी खाएंगे, चिकना खाएंगे तो बीपी होगा, और नमक नहीं जाएगा चिकना नहीं जाएगा तो बीपी जाएगा कहां से? लो बीपी हो तो मैं तपस्या कराता नहीं हूं, लेकिन आपका समय लिया है मैंने। संगीता ललवानी, सपना ललवानी चेन्नई, सपना ललवानी चेन्नई, 2009 का मेरा चौमासा, 2010 का चौमासा वहां हुआ। मेरा कोई परिचय नहीं, मेरी कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। और वहां पर जिस समय मैं वहां पर चौमासा करने के लिए चेन्नई पहुंचा 2016 में, तो उसने मैं शिवसा भवन में था आकर के कहा कि मां साहब मुझे मास्कमन करने की इच्छा है। मैंने कहा कर ले। बोले मेरी एक ही भावना है कि मास्कमन के पारने के लिए आपने घर पर आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा। फिर उसने धीमे से जानकारी दी कि मैंने 2010 में भावना भाई है कि जब भी आप पधारोगे मास्क मन के पारने में आपको घर पर बुलाऊंगे, और मैंने मास्क मन शुरू कर दिया। 15-16 उपास करे उसने और बाद में हालत खास्ता हो गई, उठने की ताकत नहीं, और मालूम पड़ा कि उसको लो बीपी। मैंने उसको कहा पहले तो बताते तू, मैं तपस्या नहीं शुरू करा था, आप पार ना कर ले, मैंने कहा मैं घर पर आ जाता हूं तेरे। जिद्दी लोग, तुम मुझे जिद्दी कहते हो, मुझे कैसे जिद्दी मिलते बता रहा हूं मैं आपको। बोले नहीं, मास्क मन के पारने में आप घर पर आओगे। अरे मैंने कहा हालत देख। बोले कुछ भी हो जाए, मैंने मास्क मन पूरा करना ही करना है। अष्टमंगल क्या वो टेनर है, पचकान देने के लिए रोज घर पर जाता था, रोज कहता था पार ना कर ले, नहीं नहीं, और मास्क मन पूरा करा।

0: फिर मां का मन पूरा किया। आस्था से तपस्या होती है, शरीर से तपस्या होती, बोलो भला, और एक बार बोलो, और एक बार बोलो। और ये नगरी तो मेरे गुरुदेव की श्रद्धा नगरी है, यहां तो किसी के खून में जाकर के चेक करोगे तो एक ही आवाज सुनाई देगा, आनंद गुरु। यहां तो कतरे कतरे में गुरुदेव है। तो जब श्रद्धा के बल पर लो बीपी में मांसकमन हो सकता है, तो आठाई तो किसी भी बीपी में हो जाएगी, है ना? अपने पर भरोसा नहीं हो, कोई टेंशन मत लो, उन पर भरोसा है कि नहीं? हेलो, है कि नहीं? है तो है। हा सूर्य, हा जयद्रथ, है ना? भरोसा है तो अठाई में नाम लिखाओ, भरोसा नहीं है तो हाथ ऊपर करो कि मारो गुरुद्वारा कृपा माते भरोसो को नहीं। बोलो जल्दी, भरोसा है तो अठाई है, और भरोसा नहीं है, हम देखता हूं किसका भरोसा है किसका भरोसा नहीं है। मैंने भी बड़े महाराज साहब की परमिशन मांगी है, अब उनके सेवा में होना तो उनके बिना परमिशन के कर नहीं सकता। पिछली बार 2009 में मैंने अठाई की थी, उस समय बड़े साथ में नहीं थे तो मैं ही बड़ा था, तो मनमानी कर सकता था। अब वो विराजमान है और उनके विराजमान होते हुए मैं मनमानी नहीं कर सकता, और करूंगा तो तुम मैं मुझे पकड़ोगे कि माने क्यों कि बड़ा रसा हमने मनमानी नहीं करनी, थे कहीं कर रहा हूं। इसलिए कल ही मैंने उनके पास बात रखी कि हमारी भावनाएं आठाई करने की। अरे अगली बात तो सुन भाऊ, पीछे हर्ष हर्ष कर, वे परमिशन देवता तो मैं हर्ष हर्ष थारा पे लगा देता हूं। ओके, थनी तो काम करनो पड़े, थनी तो बोलनो पड़े, तबियत रो ध्यान रख, तू अमर आठाई कर मत। गए कल्याण, परमिशन मांगने गए, लेकिन मैं और 2-3 दिन उनको मनाने का प्रयास पक्का करूंगा। क्या अठाई करेंगे ना? मेरी बात कर रहा भैया, मैं तुमको तो मैंने परमिशन दे दी ना? तो आई है मंगल पाठ, उठने के पहले मंगल पाठ ना? मैं बिना मंगल पाठ का कोई यहां से बिना प्रसाद लिए कोई जाए मंजूर नहीं है। थे जरा उठो ना, जरा मंगल पाठ दूर, कोई भी एक भी उठेगा तो मंगल पाठ दूंगा, पक्का है। ऐसा रोज का मेरा 9:55 का मंगल पाठ पक्का है। रविवार के दिन मैंने थोड़ा सा देखा कि रविवार ये आए हुए तो थोड़ा सा कसर निकाल ली इनके, लेकिन ध्यान में रखना मैं रविवार के दिन ही लंबा चला हूं, बाकी रोज का मेरा आप सभी के पास मैसेज होगा 9:55 को मंगल पाठ पूरा होता है ना।
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आताच आपण ऐकलात।
2: रसिक हो, दर रविवारी दुपारी 2 वाजता रेडिओ नगर 90.4 FM वर पुस्तकाच्या पानातून या खास कार्यक्रमात तुम्ही ऐकू शकाल आनंद योगी पुल या पुस्तकाचं अभिवाचन। हे पुस्तक लिहिलं आहे ना धो महानोर यांनी, तर वाचक स्वर आहे अनिल सोमणी यांचा। चला तर मग तयार व्हा पुल यांचा आनंद।

0: परम संदेश, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना, विराजमान श्री श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासती श्री जी, गुरु भक्ति में तन्मय होने के लिए जीवन भर के लिए गुरुदेव के साथ का जन्म जन्म का साथ बना रहने के लिए अपने अंतर हृदय में गुरुदेव का आश्रय करने के लिए आश्रय मीन्स वेलकम, आश्रय मीन्स वेलकम, आश्रय मीन्स सुस्वागतम। उनके तन का नहीं, उनकी ऊर्जा का। तन तो कर्म का होता है, तन कर्म से मिलता है, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है वो उनके आत्मधर्म की आराधना से होती है। ये मनुष्य का जीवन है, ये दिखने में बड़ा स्वालंबी है लेकिन सच्चाई में बहुत परालंबी है। कितना परालंबी है याद कर सकते हो? यदि मां बाप ने बैठाया नहीं होता तो हम लेटे ही रह जाते हैं। माँ बाप ने उंगली पकड़ करके खड़ा नहीं किया होता तो हम वैसे ही रह जाते। किसी गाय के बछड़े को तुमने देखा होगा, वो जन्मते ही थोड़ी देर के अंदर उछल कूद करने लग जाता है, लेकिन आदमी के बच्चे को चलना सिखाना होता है, और जो सिखाता है वो गुरु भी हो सकता है और वो गुंडा भी हो सकता है। जिसको जैसा सिखाने वाला मिल गया वैसा ही उसका जीवन बनता है। और सिखाने की ये प्रक्रिया जैन आगम के अनुसार उस समय शुरू होती है जिस समय कोई आत्मा मां के कोक्षी में प्रवेश करती है। उस समय मां बोध पूर्वक सिखाती नहीं है, लेकिन वो सीखता है, वो आश्रय करता है, मां की आहार का, मां की ऊर्जा का, मां की ओरा का, मां की लेशा का, मां के इमोशन का, मां की फीलिंग का, और वही उसका सबसे पहला जीवन का पाठ होता है। आग्रह करूंगा आप लोगों से कि दुनिया की बहुत किताबें आपने पढ़ ली, लेकिन एक बार खुले दिमाग से तीर्थंकर परमात्मा के जैन आगमों को पढ़ने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। त्रिशला के गर्भ में जिस समय तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा का प्रवेश होता है, केवल तृष्णा की ही बात नहीं, ऋषभ देव से लेकर तो तीर्थंकर महावीर तक, भरत चक्रवर्ती से लेकर तो सभी चक्रवर्ती तक, वासुदेव तक एक ही जिक्र मिलता है। और केवल त्रिषष्टि शनका पुरुष का ही नहीं, आगम में उनका भी जिक्र मिलता है जो माताएं इस रहस्य को जानती थी कि जैसे जीव गर्भ में प्रवेश करता है वैसे ही मां को, चाहे वो सोई हुई हो चाहे वो जागी हुई हो, जीव कभी भी आ सकता है, जीव कभी भी आ सकता है, चाहे वो सोई हुई हो चाहे वो जागी हुई हो। और जब भी जीव आता है अपने आने की दस्तक खबर मां को देता है। वो सोई हुई है तो सपने आते हैं, वो जागृत है तब भी उसके मन में बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग हो जाती है। मेडिकल साइंस उसको दूसरी भाषा में कहता है कि जिस पल गर्भ में जीव आता है उस पल मां का टेम्परेचर चेंज हो जाता है बॉडी का। चाहे वो नींद में हो चाहे वो जागी हुई हो, मेडिकल साइंस कहता है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और यदि नींद में का प्रसंग जाता है आगम में कि जैसे मां को पता चलता है, मां उठ करके बैठती है, जो मां ट्रेंड है मां बनने के लिए, जिसके पास जैन आगम की परंपरा है, चाहे भगवती सूत्र हो चाहे ज्ञाता धर्म कथा हो, चाहे धारणी हो चाहे तृष्णा हो, चाहे देवकी हो चाहे चेलना हो, वो सबसे पहले का आराधना करती है सुमीना जागरियम जागरंती। बोलेंगे सुमीना जागरियम जागरंती, सपनों को जगाती है, पहला काम करती है कि वो जीव जिन सपनों को लेकर के आया है, वो पुण्यशाली जीव आया है तो पुण्यशाली सपनों को जगाती है। और कोई जीव यदि अशुभ सपने लेकर के आया है तो मां सपनों की जागृति कर करके उन अशुभ सपनों को धो डालती है, क्लीन कर देती है। बार बार उन सपनों को देखती है जगाने के लिए और बाद में सोती नहीं है। देव गुरु और धर्म की कथा भक्ति गीत गाते हुए अपने समय को पूर्ण करती है, अपने साथी को उसी पल जानकारी देती है और साथी भी आशीर्वाद देता है। श्रीमान जी क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कहीं जिक्र नहीं आगम में कि उन्होंने किसी पुरोहित के आशीर्वाद लिए हो। आशीर्वाद देने का पहला पहला पहला अधिकार किसी का है तो गर्भ में आए हुए जीव के पिता का। ये आगम है, और वो माँ जो सिखाती है फिर 9 महीने, वो माँ जो सिखाती मतलब आश्रो कराती है, फीडिंग कराती है, और फीडिंग के जन्मने के बाद केवल शरीर की ही फीडिंग नहीं कराती है, गर्भ में भी केवल शरीर की ही फीडिंग नहीं कराती है। क्यों? अर्हम गर्भ संस्कार का आज दुनिया में डंका है। आज से 25 साल पहले उठा करके देखिए, तुम्हारे जैन समाज में गर्भ संस्कार की साधना और गर्भ संस्कार की चर्चा करने वाला कौन था? और शुरुआत में तो प्रवीण ऋषि का बहुत विरोध हुआ था कि गर्भ संस्कार का कार्यक्रम क्या संतों का काम है क्या? लेकिन आज देव गुरु की कृपा है कि तुम्हारे जैन समाज में एक संप्रदाय नहीं बच रही है कि जो गर्भ संस्कार कार्यक्रम की कॉपी नहीं कर रही है। लेकिन उनको पता नहीं है कि अरम गर्भ संस्कार की बुक पढ़ करके तुम कॉपी करोगे, साधना की कॉपी नहीं कर सकते हो। और देव गुरु कृपा से प्रवीण ऋषि को एक पचकान है। क्या एक पचकान है? जो पिछली बार बोला वो इस बार नहीं बोलना।
1: पक्का पचकान,
0: वो पक्का पचकान इसलिए कह रहा है कि कल शाम में ईटिंग आउट ऑफ ईटिंग में ट्रेनर ने मेरे आने के पहले सिखाया फूड चार्जिंग करने के लिए, कि मैंने उनको सिखाया था फूड चार्जिंग का। मैं यहां आया और पहला ही सवाल आया फूड चार्जिंग का, मैंने कहा फूड चार्जिंग होती ही नहीं। क्या कहा? फूड चार्जिंग होती नहीं। और ट्रेनर को तो करंट लग गया कि अब 12 सप्ताह हो गए, और वो सारी रिपोर्ट मैंने इसको जाकर दी कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। बोले वो ट्रेनर क्या करेंगे अब? और मैंने बहुत मस्ती मजाक बोला, बहुत मस्ती बोला यदि फुल चार्जिंग होती हो तो मैंने कहा यहाँ पट्टे पर बैठने के बजाय मैं वो प्रसाद शाला में जाकर बैठ जाता हूँ और सारे फूड को चार्ज करके रहता हूँ, और चार्ज किया हो फूड सारे खाएंगे तो सबका जीवन बदल जाएगा। हेलो, लेकिन आई नो, तो लोग पूछते रहे क्या करते फिर? मैंने कहा फूड चार्ज नहीं करते, स्वयं को चार्ज करते। किसको चार्ज करते? ध्यान हम करते हैं, मैं ध्यान कर रहा हूं, आप ध्यान करते हैं। तो आप ध्यान करोगे तो आप चेंज होंगे कि फूड चेंज होगा? हेलो, अरे बाप दवा लेगा तो बेटा ठीक होगा कि बाप ठीक होगा? तो मैंने कहा तुम्हारी ऊर्जा चेंज होती है, तुम्हारा माइंड चेंज होता है, तुम्हारा माइंड सेट चेंज होता है, और वो जब चेंज होता है तो तुम्हारे अंदर के डाइजेशन की सिस्टम चेंज होती है। अब रात भर सारे ट्रेनर जो भी यहां बैठे थे ना, उन्होंने रात भर एक ही उद्योग किया होगा, जिन जिन ट्रेनर को फोन करके कह सकते हैं उनको कहा होगा हमारा सबने इस उद्योग करिया। तो मेरी कॉपी करना देव गुरु कृपा से पॉसिबल नहीं है, मेरे पास्ट की कॉपी तुम कर सकते हो लेकिन मेरे प्रेजेंट की कॉपी नहीं कर सकते हो। कि मेरे गुरुदेव की कृपा मेरे पर है और अनवरत कृपा बरसती है, और जिस पर अनवरत कृपा बरसती है वो रोज नया ही होता है, पुराना होता ही नहीं। कल प्रवर्तक से जी के साथ ऐसी थोड़ी बात कर रहा था और बात करते करते उनको कहा कि आपको उनको ढेरी जो है 1976 में शुरू हुई थी, 1975-76 में शुरू हुई थी। अब उस समय मेरी उम्र तो 17-18 साल की, और मैं उनके ढेरी के कर देखते मैंने कहा क्या ये, तो वो कहते थे थाने भी आई ला, जहाँ पर बोलो बोले थाने भी आई ना। और मैंने उस समय कहा था कि मुझे नहीं आएगी, मुझे नहीं आएगी। तो मैंने उनको कहा कि याद है कि बोले हाँ याद है, बोले याद है। तो चलो मूल बात पर आता हूं। तो पहला पाठ कोई सिखा सकता है तो कौन, कौन? माँ और बाप, केवल माँ नहीं, केवल माँ नहीं, माँ और बाप, इन दोनों का आते ही जीव आश्रय करता है। क्या करता है? गर्भ में आने के बाद पहला काम कोई है तो जो बाप ने दिया है, जो माँ ने दिया है, उसको 100% ग्रहण करता है। कितना बोलो? 100%। और 100% उसको होल्ड करता है और उसी के बल पर उसकी जीवन यात्रा शुरू होती है। इसलिए गर्भ संस्कार में पहले मां बाप का संस्कार करते हैं, कम से कम पहले 3-6 महीने मां बाप को संस्कार कराने के लिए कहता हूं। तो कि जो पहला आश्रय उसके पास होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, और उसके बाद भी जिंदगी भर शुरुआत के उस समय की बात करो, आज की नहीं। आप तो सारे श्रीमंत परिवार की माताएं हैं और श्रीमंती का शो करने वाली माताएं अपने बच्चे को 2 साल के अंदर में ही टीचर को सौंपने लगे, मदर टॉडलर स्कूल में। नहीं, 2 साल में तो 3 साल की उम्र में तो लोअर केजी अपर केजी में भेजने की तैयारी हो ही जाती है। और वही समय है कि जिस समय मां बाप ने उसको इंजेक्शन देना चाहिए, माँ बाप ने उसको दवा देनी चाहिए, माँ बाप ने उसको टॉनिक देना चाहिए। और वही समय आज के सारी हमारी एजुकेटेड श्रीमंत संपन्न समृद्ध माताएं अपने समृद्धि का उपयोग करते हुए अपने संतति को दरिद्री बनाती है। और फिर वो वहां जाता है, लेकिन उस समय की बात है कि कम से कम 6 साल तक जो है, 5 साल तक जो है, बच्चा टोटली केवल माँ बाप, दादा दादी और परिवार से ही पोषण, संस्कार, इंजेक्शन, आश्रयों के 3 प्रकार। आश्रयों के कितने प्रकार? कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक जीव आश्रय करता है, कौन? जीव स्वयं आश्रय करता है। एक कोई उसको प्रेम से कराता है, और जब वो प्रेम से दिया हुआ लेने से इनकार करता है तो इंजेक्शन देता है। याद आ रहा है आपको? आपके मां बाप ने आपको पहले क्या कहा? पहले फीडिंग कराया, आराम से करते थे, बाद में बोल करके कराना शुरू किया, और जिस समय उनके प्रेम से बुलावा नहीं सुनते थे तो अनुशासन का इंजेक्शन देकर के सिखाते थे, वो आश्रम है। एक बात का उत्तर दे सको तो जरूर दीजिए। आप अपने संतान को सुखी करते हो कि समर्थ बनाते हो? व्हाट इज योर एम? व्हाट इज योर टारगेट? व्हाट इज योर फोकस? मैंने सवाल पूछा, कोई तो जवाब दे सके। सुखी? क्या सुखी? हर माँ बाप आज यही प्रयास करता है। आज के नए माँ बाप, पुराने माँ बाप समर्थ बनाते थे। जीजा भाई ने छत्रपति शिवाजी को समर्थ बनाया है, सुखी नहीं बनाया है। और समर्थ कभी दुखी नहीं होता है और सुखी कभी सुखी रहता नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? उसने डिमांड करी और तुमने पूरी करी, उसने डिमांड करी और आपने पूरी करी। यस और नो? यस और नो? यस और नो? जोर से। उसने मोबाइल मांगा, दे दिया। और दादा तो एक नंबर देने में। गुरुदेव की गाथा चल रही है, और ये दादा जब तक सुधरते नहीं ना, तब तक आने वाली जनरेशन के सुधरने की कोई संभावना नहीं। बच्चे को मोबाइल देने वाले मां बाप और दादा दादी अपने बच्चे के दुश्मन है। बचपन में एडिक्शन लगा दिया उसको, और एक बार एडिक्शन लगने के बाद कोई बाहर आ सकता नहीं है। और जिसको बचपन में एडिक्शन लग गया, फिर वो बाद में तो, और पूरा मेडिकल साइंस चीख चीख करके कह रहा है, कई गवर्नमेंट कानून बना चुकी है। चीख चीख करके कह रहे कि बच्चे का दिमाग सिंक होते जा रहा है। जो बच्चे के दिमाग का आकार 80 साल में होना चाहिए था, वो 8 साल में हो रहा है। कोई बुरा मत मानना, लेकिन थोड़ी सी पीड़ा आपको देने का मेरा मन हो रहा है। दियो क्या थोड़ी पीड़ा? देव ना? ओके, धन्यवाद। याद करो महाभारत को, याद करो महाभारत को। दुर्योधन की हर तमन्ना धृतराष्ट्र ने पूरी करी, दुर्योधन की हर तमन्ना धृतराष्ट्र ने पूरी करी। धृतराष्ट्र ने इन्हीं गांधारी ने भी अपने जीवन का नियम तोड़ करके दुर्योधन की तमन्ना पूरी करी। कुंती ने पांडु की एक तमन्ना पूरी करी। क्या पूरा महाभारत उठा करके देखिए कि पांडवों ने कुंती से कुछ मांगा हो और कुंती ने उसको दिया हो। धृतराष्ट्र और गांधारी, दुर्योधन ने मांगना और कल्प वृक्ष बन करके देना, और कुंती ने कभी दिया नहीं। उसने तो पांडवों को मांगने की आदत ही नहीं लगाई, मांगा ही नहीं पांडवों ने। एक ही आदत लगाई थी कि जो मैं कहूंगी वो करना है, तुम जो कहोगे वो मैं नहीं करूंगी, मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। पूरे महाभारत में देखिए, पांडव अपने मां, अपने गुरु और अपने श्रद्धे जो कहते वो करते हैं, उनका एक श्रद्धे नहीं है जो उनकी तमन्ना पूरी करता है। आप अपने संतति को पांडव बना रहे हो कि दुर्योधन बना रहे हो? हु आर यू? धृतराष्ट्र और गांधारी। मैंने पहले कहा था मैं पीड़ा दे रहा हूं, पहले मैं बिना पूछे थप्पड़ मारता था, पूछ करके थप्पड़ लगाता हूं। कौन सा अच्छा है, पूछ करके थप्पड़ लगाना अच्छा है कि बिना पूछे थप्पड़ लगाना अच्छा है? दोनों भी अच्छे हैं। चलो सामने तो इतना बोल लिया, अच्छा है। अनिल भाऊ, मैंने 40 साल पहले लगाई हुई थप्पड़ के आधार पर लोग अब तक मुझे थप्पड़ लगाते हैं। सबको पता है, मुझे भी पता है, और नगर वालों को तो पक्का पता है कि सबसे ज्यादा थप्पड़े किसी ने खाई है तो नगर वालों ने खाई है। ऐसा ही है। लेकिन आज आप कह रहे कि दोनों थप्पड़ अच्छी लगती है तो गुरुदेव की कृपा है ना? माहौल सा बनो। क्या बनो? माहौल सा बनो। माहौल सा ने, उसके बेटे ने जो चाहा वैसा जीवन बेटे को जीने ही नहीं दिया। रिपीट कर रहा हूं, माहौल सा ने अपने बेटे को वो जीवन जीने ही नहीं दिया जो वो जीना चाहता था, जो वो जी रहा था। यदि माहौलसा ने गुरुदेव के बचपन में जैसा वो चाहते थे वैसा जीने दिया होता तो ना तुम होते, ना तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा पक्का पता है कि मैं नहीं होता।

0: वो नहीं करने दिया जिसमें उसको आनंद आता था। पिता की आयुष्य पूरी हुई बहुत कम उम्र में, जिस समय मुश्किल से 8-9 साल के होंगे। और स्कूल में गए उस समय पिता का आशीर्वाद लेकर गए, और जब वापस स्कूल में से लाया गया तो आशीर्वाद देने वाला नहीं रहा। मां नहीं होती है तो संतति निराधार हो जाती है, और पिता नहीं होता है तो संतान अनाथ हो जाती है। पिता छत्र है, मां धरती है। बुद्धि में समझे या नहीं समझे, लेकिन दिल में तो पीड़ा होती ही होती है बाप के न होने की। ये जिंदगी की ट्रेजेडी है कि जिनको बाप रहते नहीं उनको पीड़ा होती है, और जिनको बाप रहते हैं उनको कदर नहीं होती है। शोकांति का है, ये दुर्भाग्य है कि जिनको नहीं है उनको पीड़ा होती है, और जिनको है उन्हें कदर नहीं होती। और निमिचंद बाप के दुख को भुलाने के लिए, बाप की मौत का दुख भुलाने के लिए चिचुंडी के विठल के मंदिर में जाने लग गया, कीर्तन में जाने लगा, भजन में जाने लग गया, और भजन में उसका मन रमने लग गया। उसने वहां पर अपने पिता का स्वरूप पाया, मन रमने लगा। आवाज तो गुरुदेव का, यदि वो जैनाचार्य नहीं होते तो भीमसेन जोशी को पीछे छोड़ देते। वो ताल, वो लय, वो कंठ का माधुर्य, और भजन गाते थे तो सारा भजनी मंडल झूम जाता था अभंग। और माँ ने देखा है कि ये तीर्थंकर को छोड़कर के दूसरी तरफ जा रहा है, ये तीर्थंकर को छोड़कर के दूसरी तरफ जा रहा है, मैंने इसको तीर्थंकर का नाम दिया है, निमिनाथ बनाया मैंने इसको, निमिचंद बनाया है, और ये तीर्थंकर को छोड़कर के दूसरी तरफ जा रहा है। और मां इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि मेरा बेटा तीर्थंकर को छोड़कर के और कहीं जाए, मां को मंजूर नहीं है। ध्यान से सुनना, मां वही होती है जो उसको जो मंजूर है वही संतति में कराती है, बाकी तो सब जन्म देने वाली मादाएं हैं। जिसके वचन, जिसका अनुशासन बच्चे के जिंदगी में वरदान बनकर के फलता है वही मां है। ऐसी मांग गुरुदेव को मिली। मां हुलसा ना होती ही तो गुरुदेव ऐसे नहीं होते, मां को मंजूर नहीं है कि तीर्थंकर को छोड़ करके कहीं जाए। अरे उस समय की बात है, सन 1907 8 9 10 की बात है। वहां से 115 साल पहले की बात है। उस समय महाराष्ट्र में उंगली पर गिने जा सके इतने भी संत और सत्यानी थे, लेकिन मां हुलसा को पता था, उसको पढ़ते नहीं आता था, लेकिन उसको एक दिल उसका बहुत पढ़ा हुआ था। आज की बहनों का दिमाग पढ़ा हुआ है और दिल डूबा हुआ है। मां हुलसा का दिल डेवलप था, कोई अक्षर बोध नहीं था उसको। और आज सारी रिसर्च के रही है, IQ से भी EQ महत्वपूर्ण है। भावना सुंदर, स्वस्थ, हेल्दी होना ये जीवन के लिए अनिवार्य है, जीवन की सफलता के लिए जरूरी है। ये आज का पूरा साइंस कह रहा है। और मां हुलसा ने निमिचंद को कहा है कि तू वहां नहीं जाएगा। मैं फिर कहता हूं, मां के पास बुद्धि नहीं थी, दिल था। आज की माताएं बुद्धिमान है, दिलदार नहीं है। गुत्थी बेरानी बेराओ, नहीं बेरानी मत बेराओ, दो टेंशन। आज की माताएं बुद्धिमान है, और माहौल सा दिलदार थी। माने कहा नहीं जाना वापस, और बेटे ने कहा क्यों नहीं जाना, वहां कोई मैं झगड़ा करता हूं, वहां मैं कोई गालियां देता हूं, भक्ति करता हूं। अब मां बेटे को कहे नहीं अपना नहीं उठे नहीं जाऊं नो, अब बेटे को समझ ही नहीं अपना क्या पराया क्या, भजन करना। और मां ने कहा मैंने कहा नहीं जाना नहीं जाना, ठीक है क्या बोला हिटलर, यस। एक समय में मां ने अनुशासन के लिए हिटलर बनना ही चाहिए। पिता ने बनना ही चाहिए, और जो उस समय अनुशासन नहीं करते फिर उनको बुढ़ापे में बच्चों के दुशासन में रहना पड़ता, अनुशासन में नहीं। मां ने कहा नहीं जाना, और बेटा कहे मैं जाऊंगा, मुझे कारण बताओ क्यों नहीं जाना। मैंने कहा ना नहीं जाना, जुबान मत लड़ाओ मारा सदे, कह दियो एक बार नहीं जाओ ना। और बेटा कहे कि मुझे पहले बताओ क्यों नहीं जाना है। मैं जाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं जाऊंगा। और मां ने कहा याद रख, यदि तू वहां गया और रात को घर में आने का प्रयास किया तो दरवाजा खुलेगा नहीं, रात को तुझे घर में एंट्री मिलेगी नहीं। मेरे घर में रहना है तो मेरी बात माननी होगी, मेरे घर में रहते हुए मन मर्जी से तू नहीं जी सकता है। बेटे को लगा मां बोले कहीं करी ना, और पौष माह का महीना ठंडी के दिन और ठंडी के दिनों में आज भी महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में रात के भजन कीर्तन में अच्छी भीड़ होती है। बेटा गया, मां की मना करने के बाद गया और पूरा होने के बाद लौट करके आया है। रात के 10 बजे हो गए, दरवाजा की कुंडी बजाई, आवाज दिया, नो रिप्लाई, नो रिस्पॉन्स, जोर से बजाया और मां ने उतने ही जोर से उत्तर दिया, दरवाजा बजाना नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मां ने हिंदी में नहीं बोला। और बेटे को पता चला कि दरवाजा खुलने वाला नहीं, दरवाजा बजाना बंद हो गया। और मां ने सोचा कि बेटा किसी दोस्त के घर जाकर के सोया, लेकिन ये तो अलग ही आत्मा थी। और कहीं जाकर के गिड़गिड़ाने का सवाल ही नहीं था, और किसी के पास रोना रोना और किसी के पास दामन फैलाना मंजूरी नहीं था। वो 8-9 साल का बच्चा ठंडी के दिन वही देहरी पर सर टेक करके रात बिताती, ठिठुरते हुए। भोर की वेला में मां उठी, दरवाजा खोला, देखा बेटे को ठिठुरते हुए वही पड़ा हुआ। सिहर उठी मां, मैंने क्या सोचा न क्या हुआ, उठाया और कहा तू मानता क्यों नहीं है, और गुरुदेव कहते थे जो जो मुझे जिद्दी कहते हैं ना वो सुन ले, गुरुदेव कहते थे मैं भी बचपन में जिद्दी ही था। कौन कहते थे? हाँ, गुरुदेव जिद्दी थे। तो मैं जिद्दी रहूं तो कुछ तुम्हें उंगली उठाने की जगह नहीं होनी चाहिए। और बेटे ने फिर कहा मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तो दरवाजा खोल मत खोल, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन मां की एक ही तमन्ना, एक ही सपना कि बेटे ने तीर्थंकर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए।
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आताच आपण ऐकलात।
2: स्नेहालय संचलित स्नेहालय पुनर्वसन संकुल, लालबत्ती भागातील महिलांची मुले, निराधार अनावरस बालके, HIV एड्स बाधित मुले मुली, झोपडपट्टीतील वंचित बालकांसाठी स्नेहालय पुनर्वसन संकुल आहे। या संकुलातील बालकांना दर्जेदार निवास, भोजन, शिक्षण, आरोग्य, आधार व पालकत्व देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम या संकुलात केले जाते। संस्थेमध्ये सध्या 400 लाभार्थी महिला आणि बालके आहेत। आजपर्यंत 1368 लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे। तुम्ही सुद्धा स्नेहालय पुनर्वसन संकुल या ठिकाणी भेट देऊ शकता। त्यासाठी संपर्क क्रमांक 90111005। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: माझं नाव राजू राजपरदेशी आहे. आपण ऐकत आहो रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा.
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं. दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसमें है दम. यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम.

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: खाता नहीं बार है, और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंद।

कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बाखुदी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। सुनते रहिए रेडियो निकल 90.4 FM, आवाज तुमचा।